0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 0064 20 670, मोबाइल नम्बर 98 460 56 238।

0: पैसे देना बंद कर, तुझे नहीं मिलने वाली वो।
1: एक दिन यहाँ पे सर रखेगी और कहेगी, हेलो फ्यूचर,
0: नो चांस, शी लाइक्स हॉट कार्स एंड बैड बॉयज, तू क्वालिफाई नहीं होता।
1: इवन आई कैन बी अ बैड बॉय, ओके?
0: या इन योर ड्रीम्स।

0: कट की धड़कन कैसी होती है सुन रही थी। ड्यूटी पे सोने के लिए 2 हफ्ते का सस्पेंशन और 2 हफ्ते का पे कट।
1: हेलो, नाउ दैट यू जॉबलेस, हाउ अबाउट डिनर एंड डांस टुनाइट?
2: Is that a trick question?
1: No. I mean, I like bad boys who dance. So...
2: Yes, yes. Yes, yes. Yes.
1: Okay, see you.
2: Yes, yes.
1: Hey! एड्रेस नहीं पूछोगे?

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: वो आंखें जो सिर्फ मुझे देखती थी, वो होंठ जो सिर्फ मुझे पुकारते थे, उन पर किसी और का हक बर्दाश्त नहीं होता।
2: वक्त ही कहां था तुम्हारे पास कि उन होठों पर ठहर सको, उन आंखों में उतर सको। अब मैं किसी और की हो चुकी हूं।

कौन कहता है कि बिछड़ने में मोहब्बत की हार है। जो अधूरा रह गया वो भी तो प्यार है।

प्रेशर। वीकेंड की पूल पार्टी पे एंट्री चाहिए तो रैगिंग एग्जाम में पास होना होगा। ओ, बेचारे फ्रेशर्स सब चिकन्स की तरह पीले पीले पड़ गए। यो चश्मिश फ्रेशर, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, हॉट सीनियर से प्यार हो गया, अब बस उसे पटाना बाकी है। कम ऑन, शो अस हाउ इट्स डन। शू Bam!

0: ये फ्रेशर, यू चॉकलेट फ्रेशर, ऑल दिस जो है अच्छे स्टफ, मतलब क्या है?
1: आंखों को बंद कर जब तुमको देखा, जो तुम हो उससे भी प्यारा देखा।

0: प्रेशर, जब चांस मिलता है ऐसे पकड़ लेती हूं। डू यू लाइक मी?
1: एक्चुअली यस।
0: गुड, बिकॉज आई थिंक यू रियली फील क्यूट।

Quickest Wellness Farm. भरपूर मनोरंजन सहित मात्र रु 999 मै डिश होम को फीफा वर्ल्ड कप 2026

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 0064 20 670, मोबाइल नम्बर 98 460 56 238।